0: Your favorites from the 90s.
1: मेरा दिल भी कितना पागल है.
0: 2000s.
1: दिल डूबा
0: And today. East FM, Kenya's premier Asian mix.

मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं।

कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सर।

0: में लगता तो ऐसा ही है कि हेलन पर ये फिल्म आया होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लता मंगेशकर ने ये गाया. और अब देखें कि आवाज किसने भेजी है अपनी.
1: हेलो प्री जी, वेलकम. मैं रेडियो खोल लिया तो दुनिया के रखवाले गाना आ रहा सीगा, मैं वेट की थी, मैं क्या देखा प्री जी आ रहे है. जो तुसी बोले ना बस मैनू इतनी खुशी हुई, मैं क्या चलो प्रवीण ठीक ठाक होके पहुंच गया सानू खुश करने ले. परमात्मा थोनू अच्छी सेहत दवे ते सानू खुश कर दे रहो, आप भी खुश रहो. थैंक यू जी.
0: समय जतेंद्र एक लिसनर है, मैं हमेशा कहती हूँ जिन्होंने सबसे पहले वॉइस मैसेज भेजना सीखा और शुरू कर दिया और रोज़ाना करती हैं इतनी महारत के साथ, एक्सपर्ट हो गई हैं. अच्छा, आपके बाद जो हैं किसने भेजा है मैसेज जी? खतीजा, आपने का भेजा है फर्स्ट मैसेज कि जिनको कत्ल किया था ही वॉज पीओ गामा पिंटो. वो भी थे कत्ल हुए, लेकिन ये आंसर नहीं है खतीजा. कला जानी ने क्या कहा है? पियो गामा पिंटो. नहीं कल्पना, ये भी नहीं है. अच्छा, फिर आता है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी. लेकिन क्योंकि आपने शायद सुना नहीं, फाल्गुनी मैंने कहा था वो एशियाई थे, केनियन थे. आई मीन केनिया में उनको मारा गया था, केनिया में उनका कत्ल हुआ था और केनिया की सियासत में उनका बड़ा अनुभव था और बहुत एक्सपीरियंस थे. ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे, मैं श्योर नहीं हूँ. अच्छा, मिसेस धंजल, आपने कहा है पियो गामा पिंटो. नहीं. मंजू डगर, आपने कहा है जेंगा. नहीं, फिर भी नहीं. आपने कहा कि मैंने गूगल तो किया है मंजू, नहीं वो नहीं है आंसर. ओके, सो ट्राई. आपने कहा है प्लीज. ओके, वो गाना जो आपने कहा था थोड़ी देर में आप एस टी बर्मन वाला गाना सुन लेंगे, ठीक है, माँ का ही होगा. लेकिन समिन, अब देखें, अब तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया. वॉज हिज नेम, नहीं मुझे पूरा नाम चाहिए. सना काना, आपको पूरा नाम देना है एक नाम से क्या? अगर आपने मेरा नाम कहीं देना हो तो सिर्फ कह दें परवीन, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रखता. आई कुड बी अ थाउजेंड सर नेम वाली, ठीक है. तो एक नाम तो कभी भी ना दें किसी भी आंसर में, ठीक है. और जो माँ वाला है, समझ, माँ ही है जो आपकी दुनिया बनाती है.

कमाल कर दिया है एसटी बमन ने। उस समय कभी कोई माँ के दिन ये गाना नहीं सुनाता, हालांकि इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। खैर किसी को नाम नहीं पता, मुझे खुद भी भूल गया था, मैंने सुना तो हुआ था नाम, लेकिन इस तरह से कत्ल का वाक्या मुझे नहीं

0: बात है कि दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे, ये सही है एक्चुअली। दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। और करना क्या है आपने, तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी है। वाह, क्या लिख कर गए हैं हमारे शायर जो लोग हैं। अच्छा, चिराग पटेल, अब देखते हैं कि इन्होंने अपना बदला है या नहीं। आपने चनन सिंह कहा था, नहीं। और रसीला फिट्स डिसूजा, नहीं। और आगे कौन है, कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना आंसर, पर कोशिश करें सही जवाब देने की। अगर गूगल पे नहीं है तो अफसोस की बात है कि गूगल पे कैसे नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है।
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: East FM.
1: The Grammy Award winner, the film soundtrack genius, the jazz maestro, the man behind your all-time favorite hit.
3: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
1: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one-night only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
3: I'll be performing all the Grammy Award-winning songs just for you.
1: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob.
3: It's going to be a night to remember. You gotta get your tickets, Kenya. See you soon.
1: Sunday, 31st May. Grab yours now at ticketyetu.com.
4: All the great songs that make your day.

0: कोई कहता है ये दुनिया भरी हुई है, कोई कहता है ये बहुत छोटी दुनिया है, कोई कहता है कि पता क्या दुनिया जितनी भी है बड़ी है, छोटी दुनिया वालों से दूर जाना है। ठीक है, अब यहाँ फरखंदा शेख क्या कहती है।
1: अस्सलाम वालेकुम परवीन, मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ। पहले तो मैंने कहना हैप्पी मदर्स डे। माँ का तो बड़ा बहुत रोज रोज दिन होता है परवीन। माँ तो ऐसी चीज है कि दुनिया में मिल नहीं सकती, हर चीज मिल जाती पर आप अपनी माँ को बहुत याद करते हैं परवीन। माँ, माँ का नाम क्या है माँ। और परवीन मैं ये कहती हूँ कि प्लीज ये गाना, मैंने तो लेट रेडियो खोला है, ये गाना लगा सकती है। ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के मैं चला, अलाफिस।
0: अच्छा ये एक्चुअली मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं तेरी उंगली, ओके ठीक है ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन अगर ना हुआ 2 दिनों में तो फिर कोई बात नहीं। ओके आंसर जो आज का है वो मार्गरेट एडलिन नहीं शुभना, और चिराग पटेल, फिट्स डिसूजा नो, यासर अलाउ मी टू ट्राई अगेन, मोहम्मद अमीन नो ही वॉज नॉट असैसिनेटेड ना, ये जो थे इनको असैसिनेट किया गया था। मोहम्मद अमीन तो एक क्रैश में मारे गए थे, उनका इंतकाल हो गया था, खुदा उन्हें जन्नत दे। और शबीर अहमद, क्या बात है शहजादी साहिबा, किशोर का भी गाना, समय कुछ किशोर के गाने भी वाकई यादगार रहेंगे। अच्छा फिर आपने नहीं ढूंढा और नहीं मुश्किल हो रही है ना, तो उनका नाम मैं खुद आपको बता देती हूँ, वो थे ईश्वर दास जी। समय ऐसे लोगों को जो हमारे देश के लिए कत्ल हो गए, किसी कातिल ने आकर उनकी जान ले ली, वजह यही थी कि वो इन्वॉल्व्ड थे सियासत में, तो मतलब हमारे लिए, हमारी तरक्की के लिए वो चाहते थे कि अफ्रीकियों को उनके अधिकार मिले, गोरों ने नहीं देने थे, बस दुश्मनी पैदा हुई उनकी जान गई। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो हमें याद रखना चाहिए। खैर आज के बाद ईश्वर सिंह याद रहे आपको, ईश्वर दास।

0: कमाल है इस रंग बदलती दुनिया में। अब चलते हैं जी नलिनी आर शाह, बड़े मीनिंगफुल होते हैं इनके मैसेजेस। कहते गुड मॉर्निंग, यू ट्रूली एंटरटेन एवरीबॉडी, आई सल्यूट यू। थैंक यू नलिनी। टॉकिंग अबाउट मदर्स डे, इट्स नॉट सेलिब्रेटेड वन डे बट एवरी डे इज मदर्स डे, पोर्ट्रेड एज द इमोशनल सेंटर ऑफ अ फैमिली। ये बात तो सही है समिन, अगर मरकज है किसी भी परिवार का सेंटर, इमोशनल जज्बाती जज्बात से जुड़ा हुआ, तो वो माँ है। शी इज डिपिक्टेड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, समिन वो हिफाजत करती है अपने खानदान की। लविंग, कंपैशनेट, काइंड, केयरिंग, माइंडफुल, स्ट्रॉन्ग, शी लव्स यू अनकंडीशनली। समझ, उसका प्यार शर्तों पर नहीं होता। और कहती हैं कि शी पुट्स हर फैमिली बिफोर हर सेल्फ, ये भी बात समझ। बेशक कोई लिटरेट माँ हो या इलिटरेट हो, उसके लिए उसका परिवार पहले आता है। देर इज नो वन लाइक अ मदर, वेरी स्पेशल शी इज, मे गॉड ब्लेस ऑल मदर्स। समझ, ये दुआ वाकई नलिनी, हमें आज यही दुआ करनी चाहिए कि खुदा आसानियां पैदा करे हर नेक माँ के रास्ते में।
1: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
2: Ocala is expanding into Kenya. We are building our East Africa team and looking for a country director to establish and lead Ocala Kenya. Bachelor's degree in a relevant field and 8+ years leadership experience in biodiversity, ESG, environmental consulting, natural resources or related sectors is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews. With news from Kenya, Asia and around the world, this is East FM News. East FM.
3: The National Assembly will tomorrow begin a three-day public hearing on the 4.78 trillion shillings budget for the 2026-2027 financial year. The hearings will be conducted by the Budget Appropriation Committee, chaired by Alego Songa MP Samuel Atandi. The exercise will take place in 16 counties, including Nairobi, Garissa, Kitui, Homa Bay, among others. Some leaders in the country now say it would have been more diplomatic for visiting French President Emmanuel Macron to address audience behavior through the proper protocol channels. International relations expert David Kikaya argues that it was not standard practice for Macron to interrupt and rebuke members of the audience during a public forum at the University of Nairobi, insisting the public forums are open to different opinions.
4: Of course, in terms of protocol, it's not just doable. It still was a point that concerned him or his country or his opinion. Then he would, in diplomatic language, seek the right of reply.
3: Lurambi MP Titus Khamala has explained why campaigning for President William Ruto's re-election bid in the Western region remains difficult. The lawmaker says many development projects promised by the current administration are yet to be completed, making it hard for residents to trust fresh pledges from the government. Jubilee Deputy Party Leader Fred Matiang'i has dismissed President William Ruto's remarks that the opposition lacks a clear agenda. Speaking during a joint interview with Mulemba media stations, Matiang'i urged Kenyans to remain patient, noting that internal consultations are ongoing. He emphasized that the opposition will eventually settle on a single candidate to provide a united front ahead of the 2027 general election.
5: Wale ndugu zetu wako kwa serikali wanataka tuwe na haraka sana. Umetaja mtu ni fulani and so on. Labu wanza za porojo na shida. Ili sasa tusambaratike. Na sisi sio wajinga hivyo. Kuunda serikali ya mseto. Sio kitu raisi.
3: Institutions of higher learning, especially those sponsored by churches, have been urged to take a leading role in ending goonism by educating students and society on the importance of unity despite cultural and political differences. Leaders say private institutions should also make education affordable to surrounding communities to promote equal access to learning. That's the news update on East FM. I'm Suzanne Kimashia.
1: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM. East FM. Asian Mix. Asian Mix.
0: चलिए अब देखते हैं कि किसने क्या लिखा है. अश्विन दोषी के समय मेरे फोन के साथ कुछ गड़बड़ सी हो गई है. दो चार लिसनर्स ने भेजा है मैसेज कि वो कांट रीच मी. पता नहीं अब घर जाके पता चलेगा या कुछ हो गया है. अक्सर लोग करते हैं शिकायत कि आज हमारे फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे, अब कांट रीच यू. एक दूसरे को भी कहते हैं, न जाने तब ये क्या होता है. लेकिन व्हाट अ अनफॉर्चुनेट थिंग. और यहाँ है एक गाना, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती. किशोर और आशा का ये. अच्छा ढूंढती हूँ, करते हैं कोशिश. और आप शुभना, आपने कहा है शबीर अहमद कहते हैं सॉन्ग ऑफ रफी साहब, ओ इट्स द बेस्ट सॉन्ग, नॉट इजी सॉन्ग टू सिंग. ओ माय गॉड दैट सॉन्ग, वो तो गले में से खून निकले. ऐसे गाने भी गाकर गए. अमीर अली राना, परवीन जी, पीपल आर लकी हु स्टिल हैव देयर मदर्स, कीप देम एंड चेरिश देम. सम ऑफ अस डू नॉट हैव मदर्स एंड रियली मिस देम. बिल्कुल सही कहा अमीर अली राना कि जिनके पास माएँ हैं बड़े लकी. आज सुबह ही मैं कह रही थी किसी से, कहने लगे कि हम अपनी माँ को, माँ के साथ थे लंच में. मैंने कहा कि बहुत लकी हैं आप दैट यू कुड हैव लंच विद हर. समझ, कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी माँ के साथ लंच खाए हुए करीब 30 साल बिता दिए हैं. तो ऐसा भी होता है. खैर दुनिया की बात चल रही है तो चल चल रे मुसाफिर चल.

उस दुनिया में चल समिन, वो तो देखना है, पर इस दुनिया में कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात आपको आने चाहिए, है ना। अब सिड्स, SIDS, समिन कहते हैं कि सिड से मौत होती है किन की? SIDS ये कोई बीमारी है आप कहेंगे, कोई हैंटावारे वायरस जैसी बीमारी तो नहीं है? नहीं, SIDS कुछ और ही है। और किन की मौत होती है इससे, SIDS से, ये आप गूगल कर सकते हैं ताकि सबको पता चल जाए, बेशक आपको नहीं पता कोशिश करें। SIDS क्या है?

0: अश्विन अब पूछना है अश्विन दोषी से कि अश्विन दोषी इज दिस हाउ एन अनमोल रतन साउंड्स
1: यस इट्स अ क्लासिक क्लासिक सॉन्ग है परवी जी
0: बिल्कुल ये कौन है गाने वाले
1: लता मंगेशकर एंड करण दीवान
0: लता की भी आवाज लता की नहीं लग रही
1: यू नो दिस वाज फिल्म्ड इन 1949 शी वाज जस्ट कमिंग इन एट टाइम लता वाज जस्ट 16 और 17 इयर्स ओल्ड वो बच्ची थी ना तभी
0: अच्छा इसलिए
1: इसलिए उनका वॉइस ऐसा अभी अनट्रेन था और छोटी लड़की जी जैसा था
0: बिल्कुल कमाल कर दी हाँ लेकिन गायकी देखें क्या
1: yes.
0: हुनर था उनमें
1: यस परी जी ये फिल्म थी लाहौर
0: लाहौर फिल्म जी okay.
1: यस फिल्म जिसमें करण दीवान वाज द मेन एक्टर एंड नरगिस वाज हिज हीरोइन
0: नरगिस
1: and as name suggests it was a partition story
0: acha okay lahore
1: okay hmm. yeah lahore haan. yes you know people how they what happened in partition you know it
0: horrible yes
1: it was horrible terrible hmm. on both sides
0: ha
1: to unki story thi haan. film Parvin ji hit hui thi
0: acha
1: music tha ye shyam sundar was a upcoming music director lekin kya hua ke he died early in the career
0: oof
1: yes due to alcoholism
0: oh my god but yes ye sabhi yes. geniuses ko na lag yes, par yes, ho jati yes. hai
1: parvin ji shamsudar ke gaane bahut nurjan ne bhi gaye hain jab wo हिंदुस्तान में थी
0: हाँ.
1: और लता मंगेशकर सभी रह हाँ. गए हैं
0: हाँ.
1: और यू नो ही डाइड अर्ली एंड गीत सभी लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने
0: ओ माय गॉड इतनी अर्ली से राजेंद्र कृष्ण ने शुरू कर दिया
1: 1949 की फिल्म थी पर मुझे
0: अच्छा
1: हिट हुई थी पर
0: ओ फल्ला लाहौर क्या बात है लाहौर की अच्छा थैंक यू यही सोच रहे थे आगे भी कई गाने आ रहे हैं जिनके बारे में बहुत मालूमात नहीं है तो आप रहिएगा ट्यून्ड अप जो फोन काम कर रहा
1: है वो भी
0: जी
1: जब भी हम कॉन्टेक्ट नहीं वो मुझे वो गाना आपने बजाया थैंक यू शमशाद बेगम का बहार का दुनिया का मजा ले लो
0: दुनिया तुम्हारी है दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे
1: क्या वेडिंग है वो भी राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे
0: वो भी इसी ने तो क्या बात है उनकी एसडी
1: बर्मन का म्यूजिक था
0: अच्छा
1: और वो फिल्म प्रवीण जी बाहर विजिन दिमाला की फर्स्ट हिंदी डेब्यू फिल्म 1951 की
0: अच्छा बाहर ओके
1: बाहर
0: और आपने सुना एसडी बर्मन की आवाज में मैंने सुनाया था माँ का गाना
1: यस यस यस यस
0: ठीक
1: yeah.
0: है
1: कौन सी फिल्म है वो अभी मुझे मालूम नहीं है कौन सी फिल्म
0: मेरी दुनिया है माँ तेरी इज इट गाइड नो आई एम नॉट श्योर लग रहा
1: है आराधना आराधना आई डोंट नो
0: कोई कोई हमें अभी बता देगा अभी अभी मेरे लिसनर्स बहुत चौकन्ने हैं करेंगे अभी अभी मैसेज
1: ओके
0: थैंक यू अश्विन समनो अश्विन दोषी के साथ जो बात नहीं हो रही थी वो हमारा ही कसूर था कि किसी ने किसी मोड पे रख दिया था और वो कर नहीं पा रहे थे अच्छा सब कुछ मिलता है लेकिन माँ नहीं मिलती ये नहीं मिल रहा मुझे सो आज नहीं हो पाएगा पर आपने बहुत ग्रेशियसली कहा इट्स फाइन शोभना थैंक यू यहाँ पर यासर हैं कहते हैं ओफ फर्स्ट कॉलर टू गिव मी द राइट आंसर यासर सिड्स क्या है SIDS समय उन्होंने बता दिया आप भी ढूंढें गूगल करें या किसी को कॉल करके पूछें ये है क्या सिड्स

0: अपने जमाने का हिट सॉन्ग था ये। और समीन अभी अभी आरफा दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉयिंग द सॉन्ग्स। और आपने रीज़न भी पूछा है कि कल नागा किया है। ओके, शनाज बट फ्रॉम तंजानिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो सिड्स मैंने कहा है। तो समीन, सिड्स के बाद पहले सिड्स का आंसर मिल जाए तो मैं आपको बताऊं कि आज का मुहावरा किस लफ्ज पर है, लेकिन यहाँ पर है शोभना। ये आराधना फिल्म अश्विन भाई आराधना का गाना था, और अश्विन भाई ने ठीक कहा था, मेरी दुनिया है माँ, वो आराधना का गाना। बहुत शुक्रिया आपका शोभना। और तलाश शहजादी साहब, तलाश का गाना। ओके, भरत गंगाराम, आपने कहा है कि पालना मौत को डेथ, छोटे बच्चों की मौत। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, जो आपने ट्रांसलेट करके सिड्स का कहा है, वंडरफुल, भरत गंगाराम, वेरी वेल ट्रांसलेटेड। जब भी मैं जवाब देती हूँ ना तो तब मैं पढ़ती हूँ। अमीर अली राणा, परवीन जी द सॉन्ग वॉज फ्रॉम तलाश, और किसी ने कहा आराधना, वो तलाश का गाना था। ओके, अमीर अली राणा, आपने सिड्स का भी करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और सिड्स का खतीजा आपका भी दुरुस्त जवाब है। नीला शेत क्या कहती हैं?
1: ये जो गाना है ना, तेरी दुनिया है माँ मेरे आंचल में, वो गाना तलाश का है, राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। थैंक यू सो मच नीला शेट।
0: हाँ, आराधना नहीं थी फिल्म, सो प्लीज कंफर्म करके अगर आप बताते हैं तो फिर अच्छा है। यहाँ पर है,
2: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण, मुझे लगता है ये प्यासा सावन का गाना है, सब कुछ मिलता माँ नहीं मिलता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छिंदर।
0: सब कुछ मिलता है, किसी ने मुझे कहा वो मिलता है, मैंने इसका मतलब सब कुछ में भी नहीं था, पर देखते हैं अगर मिलता है तो सुना दूंगी। ओके छिंदर सैमी, थैंक यू। 38 ईयर्स अगो अ रिलेटिव लॉस्ट हर डॉटर टू सिड्स, ये कहा है टीना ने, ऑफ कोर्स यू वुड नो देन व्हाट इट इज। ओके,
3: हेलो सलाम परवीन जी। परवीन जी, कल जैसे ही हमें ये पता चला कि परवीन जी की तबीयत ठीक नहीं है तो सब स्वाभाविक था, हम चिंतित हो उठे परवीन जी, और पल पल की खबर हमें मिल रही थी। और जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ में हमें ये पता चला कि परवीन जी ने कुछ वेज खा लिया था जिस कारण उनकी तबीयत खराब हुई, तो यकीन मानिए परवीन जी, जितनी भी सब्जियाँ घर पर थी हमने उठा उठा कर बाहर फेंकी, और यही कहते रहे कि तुम्हारे कारण ही हमारी परवीन जी की तबीयत खराब हुई है। और जब टिंडों की बारी आई तो वो बोल उठे, परवीन जी हमारा क्या कसूर है, टिंडे तो हमें तो परवीन जी वैसे ही नहीं पसंद करती। और परवीन जी, जब पता चला कि आज सुबह आप प्रोग्राम पर आ रही हैं, ठीक है, तो वापस हम सब्जियां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इसी कारण थोड़ी मुझे देर होगी। और परवीन जी, जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना रखें। तो परवीन जी ने कहा कि आजकल 24 घंटे मुझे यही टेंशन रहती है कि कहीं मुझे टेंशन ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, मुलाकात होगी कल, धन्यवाद।
0: सामिन, आपने देखा है अजय पाल, माय गॉड, मैं क्या कितनी तारीफ करूं। और मुझे बहुत अफसोस होता है जब भी ये मुझे मैसेज करते हैं इस बात का कि इनको तो एक मशहूर राइटर होना चाहिए। सामिन, जिस तरह के से ये कंस्ट्रक्ट करते हैं सेंटेंसेस, जिस तरह से ये आइडियाज इनके माइंड पर में आते हैं, यूनिक आइडियाज हैं। आपको नहीं लगता कि इनको राइटर होना चाहिए? मुझे, मैं कई बार इनको, मैं जोक नहीं कर रही, समय वंडरफुल। उन्होंने कहा जब से पता चला कि इन्होंने वेजिटेरियन खाकर इनको, हमने सब कुछ बाहर फेंक दिया, वो कहते हैं टिंडे वापस कर लिए क्योंकि टेंशन नहीं लेनी, टिंडे ले लेने। नहीं, एक्चुअली पता है क्या अजय पार, कल मैंने सोचा मैंने अब आज के बाद वेजिटेरियन खाना ही नहीं, पर जैसे आपने कहा है ना, ये जो वर्ड किया है ना, मैसेज वापस आपने कर लिए है, पूरी सब्जी आज मैंने टिंडे ही खाने। थैंक यू सो मच अमीना। कहते मेरी दुनिया है माँ सॉन्ग इज फ्रॉम फिल्म तलाश. सो करेक्ट हो गया है. ठीक है, इट वॉज नॉट फ्रॉम आराधना. नूनी किसुमु से मिस्ड यू यस्टरडे, होप ऑल इज वेल. सिड्स का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नूनी किसुमु से. रमेश हरिया, आराधना का गाना था सफल होगी तेरी आराधना, सो एस टी बर्मन के स्वर में था. जो आज आपने सुनाया वो तो तलाश का था, बिल्कुल सही. इसीलिए कंफ्यूजन हुई है रमेश हरिया, ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन इसी वजह से हुई है.
2: मौसमी चटर्जी ते जतिंदर गंदे हैं, सब कुछ मिलता माँ नहीं मिलता.
0: हाँ वो पता है गाना, मिलेगा तो जरूर जरूर.

कहाँ जाइएगा, यादगार नगमा। और समय ये जो है ना, अब मैं आपको जवाब भी दे दूं और ये भी कह दूं कि आज का मुहावरा दिमाग है, मुहावरा दिमाग। एक एक मुहावरा दे दें सभी तो हो जाएगा आधे घंटे में दिमाग, दिमाग पर मुहावरे दें। लेकिन ये जो आंसर था ना सिड्स का, वो था सडन इन्फेंट डेथ, अचानक बच्चे का मर जाना, नौमौलूद बच्चा, यानी अभी भी पैदा हुआ है, चंद दिनों का बच्चा है, चंद माह का बच्चा है, चंद हफ्तों का, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सिंड्रोम इसलिए कहते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये क्या है वजह। फिर आपने देखा कि बीबीसी के मुताबिक जाली स्लीप एक्सपर्ट्स गलत सलाह दे रहे हैं। समय हर कोई सोशल मीडिया पर माहिर बना हुआ है, वो माओं को कह रहे हैं कि देखो बच्चों को सुलाने के हम आपको तरीके बताते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, ना तो वो रिसर्चर्स हैं, ना साइंसदान हैं, ना एजुकेटेड हैं। तो इससे अचानक मौत नहीं होगी, कोर्ट को तौलियों से भर दें, यानी कोर्ट को जो है ना टॉवल्स भर दो, वो वार्म रहेगा बच्चा, टॉवल पे टॉवल रखो, बच्चा सो जाएगा। ये कोई सेफ स्लीप एडवाइस नहीं है। सो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी आता है ना, सावधान रहें, बिल्कुल बिलीव मत करें।

अच्छा, बीना पटेल ने कहा दिमाग से पैदल, मतलब इट लुक्स इट साउंड्स इनकम्प्लीट, ये पूरा नहीं लग रहा बीना पटेल, अगर आगे कोई अल्फाज हैं तो बताइए। चिराग पटेल कराटीना, आपने क्या कहा है? चिराग पटेल ने कहा है कि दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर है, ठीक है, एन आइडल माइंड, दिमाग ताज़ा करना बिल्कुल सही, टू रिफ्रेश योर सेल्फ, वरना तो आपका जिस्म ही दिमाग को ताज़ा करता रहता, पर आप भी कर सकते हैं। चिराग एक और दे दो, मुझे पता आपके पास पाँच छः तो हैं, और आपके पास जो सोर्स है वो बड़ा रिलायबल है, तो प्लीज़ और कुछ दे दें, हालांकि मैंने शर्त रखी थी एक एक। अब देखें यहाँ पर कौन है, किसी को दो चार बार मैसेज करके डिलीट कर देना तन के, ताकि उसका सोच सोच के दिमाग दही बन जाए। अच्छा, ओके, पता नहीं होता, परमिंदर चन्ना ने कहा है, या बिल्कुल दिमाग का दही तब बनता है। शोभना, प्रेजेंस ऑफ कोर्स इन इंग्लिश इज इट ट्रांसलेट एज डोंट ईट माय हार्ट, वो देखो ना, डोंट ईट माई हेड तो है ही नहीं ना, कोई हंसेगा आप पर, क्योंकि हम नहीं इसको ट्रांसलेट कर सकते। शोभना, सोनल आपने कहा है दिमाग से निकल जाना, दिमाग दौड़ाना, करेक्ट। आपके दूसरे भी आ रहे हैं, जैसे कि चिराग पटेल की भी हम वेट करते हैं। एक गाना और फिर

क्वेश्चन आज बट तंजानिया कहती है दिमाग खाना. जी हाँ, दिमाग खाना सभी को याद है ये मुहावरा है ना. अभी देखते हैं कि किसने, नूनी ने कहा था दिमाग का फलूदा बना दिया है. बहुत खूब, ठीक है नूनी, आप हैं मेरे ख्याल से किसुमू से बिल्कुल. और सना काना, दिमाग में बिठाना, यस मतलब कि उसके बारे में ही सोचते रहना, दिमाग में बिठा देना. और दिनेश पोपट, विशिंग यू आर वेल, दिमाग पे चढ़ जाना, दिमाग का दही बना देना. दिनेश पोपट फ्रॉम सिड कप कैंट. और इसी के साथ समय, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ जाए थे, मुश्किल हो गया था, लेकिन वो मैंने दो सवाल भी ज़रूरी थे पूछने थे. अब ऐसा करते हैं समन, मैं चलती हूँ, आपने साथ देना है ईस्ट एफएम पर अब अगले प्रोग्राम का, जिसकी मेज़बान है निम्रत. और कल हमारी और आपकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी. हालांकि मैंने फ्राइडे को भी यही कहा था, अल्लाह ने चाहा तो सोमवार को मुलाकात होगी, इंशाल्लाह होगी. अब आप दो गाने सुनिए, आपके लिए छोड़े जाती हूँ. अल्लाह हाफिज़.

मैं किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए, जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए।